कनपुर छ कनपुर बजार त्री चौक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली सम्पर्क 9861 37744 र 9183577।

जुना जुना के भयो? आँखा खोल न मिच। जुना जुना आँखा खोल न। जुना आँखा खोल न।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त चित्रा?
1: के चित्रा? को फुलीवाली? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी त अनि मेरो फुलीवाली।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

0: お前ね、文字おでかおきやね、ちゃ
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी लिखवा ले का अरे रे ए
1: आ जिगर पलट

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे